हूँ, उनके एक इशारे पर मुस्तफा से मिलता है शिजरा गौसे आजम का। लेकिन मेरे गौस का नामे नामी इसमें गिरामी वो नाम है कि जिसको दिल से ले लिया जाए तो मेरा यकीन है इंशाल्लाह मुसीबतें टल जाया करती हैं। कैसे मुलाहिजा करें,

कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का सच्चा वली गौसे आजम, इसीलिए कहा है क्या।

बाबा फरीद मसूद शकरगंज अली रहमा की बेकसपना में ये कलाम थी। एंड यस वी हैव द बज में शाह इकबाल चिश्ती साबरी ऑफ साउथ अफ्रीका। दे इनवाइटेड टू अटेंड द विसाल शरीफ एंड उर्स प्रोग्राम इन ऑनर ऑफ हजरत सैयद मोहम्मद शाह चिश्ती साबरी जहांगीरी कंबलपोश रहमतुल्लाह अलैह वेंसडे 12th ऑफ अगस्त। द प्रोग्राम कमेंसेस एट 5:33 PM आफ्टर मगरिब सला। देयर इज अ फुल प्रोग्राम, ऑल आर वेलकम इंशाल्लाह अज़ीज़। इशा सला खत्म खाजगान फॉलोड बाय महफिल समा एट द हजरत खाली शाह कम्युनिटी सेंटर एट सेकुरमारी रोड इन क्लाउड इन डर्बन। आई हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड द प्रोग्राम दैट्स गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस ऑन द 15th ऑफ अगस्त एज़ वेल एंड दैट इज इन जोहान्सबर्ग एट द रेसिडेंस ऑफ अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर जनाब अलाउद्दीन इस्माइल साहब। एंड देन वी हैव द बज़्म-ए खालिद शाह ऑफ केप टाउन एंड दे ऑल्सो होस्टिंग द उरुस देयर एज़ वेल एंड दिस इज ऑन संडे द 16th ऑफ अगस्त एंड दैट इज एट 2 PM एज़ वेल। So please follow the posters out there because there's quite a number of announcements to be made. And then there's one more here. And this is the Bazm-e-Sayyid Muhammad Shah NPC. And they're also having a Visal program of His Eminence Hazrat Sayyid Muhammad Shah Chishti Sabri. And this is Wednesday 12th. And venue again is the Mazar of Hazrat Sayyid Khalid Shah Bawa Rahmatullah Alayh in Benoni. And this program will commence at 7 PM. So I'm going to be playing you मन खबर हमारी की रंगीन शाम है और ये शाम आपके नाम आप ये भी महमूद के साथ है। मैं आपका मेजबान हूँ। Apologize there. I'm going to be playing you a man kabar. And of course, this has been written especially for Qibla Muhammad Shah Chishti Sabri Jahangiri Kambalposh. And I'm sure the lovers of His Eminence will really love this kalam.